0: ये क्या पागलपन लगा रखा है? गधे और गधी की क्या बोलियां बोल रहे हो? इंसानों की तरह बात करो, हंसो, गाओ, नाचो।
1: तो प्यारे तू शुरू कर।
0: ये बात है।
2: छेड़ो धुन मत वालों की, बहकी बहकी चालों की, शहर से दूर नशे में चूर।